सभा इतिर पगुलको पगुडी सिरेबा तवस अय सनकिदारो मिसंपुरु बाबा गाम पत्रकतन सभा माजुजाया ताबित मामराबित तरह सभा 2020 पदबदम दत कतलुना पर मिसर तुलान कवालो दिते मंतान RTM teman setia anda.